श्याम मंदिर तया तत्सनातनो तनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल धिया भक्त्य मकरान शीलता मुक्तीन अधिकान नमस्यामि भक्ति रथ सपस्ति रखिलो भगवन मंगल प्रसंगस्य अज्ञापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाय एतस्य भगवद भक्ति रसामृतोपयो निधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागा पूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्यविभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपते अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयं आद्या सामान्यभक्त्याभ्यां द्वितीया साधनाङ्किता भावास्थिता तृतीयात्र सूर्या प्रेमनुरूपिता तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यं मह्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतान्वतम् अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मार्तनावृतम्

ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय शान्ति शान्ति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय शान्ति शान्ति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।